0: Kalati Evening Drive ka Net FM Hatarawati.
1: अतिशय प्रथम डीजे संग्राम नेट एफएम डीजे नाइट आदो रैन नवेटा

बरसात के दिन आए उस रात के दिन आए दीवानी दीवानी जवानी मस्तानी उमतु थारुण्य वैस अलुपाट मे हम दे हमोगे महादवते कहे हरितिया नो मन क्यूए थारुण्य केला किया ने तवत इलाकम कटाई थी हैंगी मक वितरक ने वे इलाकम एक तीरन है वन हैंगी मक ने वे थारुण्य किया समार विटा अर्ध शते के किन यहाँ पत्ते इन्न प्रेमवंत एक टन तम प्रेमवंत एक टत वर्षा में यही ने अकेतुले थारुण्य पीली बंद माता के हैंगी मैं थी हरी दें अद अभी खाता कराने किया न को मुना आ गया न देखिए ला यान न कनेक्ट एफएम फेसबुक पीटर टिके हिम बालान न वॉल पोस्ट अबे विश्वास करना नंग ईलंग बावयक अनागत ससरक बावेन बावया ससर के लिए वृत्ति प्रार्थना करना किन्हेक ईलंग बावेट अत प्रार्थना करना किन्हेक अब टे इन्ना आदि के लाय मांगा हाँ नहीं बिंदु ऐ हद से ये कल हाय अनुपहाय अनुपहाय अनुपहाय नवित किया ना